0: पता, ऑन बटन कितने भी नहीं सी पता। तो देखो मेरा गल करने का मकसद यह है कि अपने बुजुर्गों को कुछ दे रहे हो ना सिखा दिया करो, इन्ने कितने बिजी हैं आप, पांच दस पंद्रह मिनट कढ़ नहीं सकते कि आप उन्होंने सिखा दिए भी टेक्नोलॉजी काम किवें करदी है। जे तुसी उन्होंने फोन लैके दे रहे हो उन्हां दी एक सेफ्टी दे लई, या चलो थोनों पता होवे वी ओह कित्थे ने, उन्होंने कदे लोड़ पै जावे तुसी उन्होंने सिखा तो दो कि यार कॉल किवें लाउणी है, या पता नहीं होर कोई चक्कर होना, आई डोंट नो होर की हो सकता। बट मैनू गल थोड़ी जी अजीब जी लगी। तो खैर बजुर्गों को सिखा दिया करो किवें चीज़ें चलाउणी आ। 4790 हैलो।
1: हैलो नवीर,
0: सत श्री अकाल, किवें हो?
1: अपने पेरेंट्स नूं फोन तो दस दे पेन है
0: ना,
1: फेस लगदा जे एंड्रॉइड फोन तो पेन दसणगे, जे आईफोन जां फेस उन्हां दा लाउगो है ना फेस आई डी,
0: बच्चिया ने वो कह दे के पुत मेनु लभिया मैं की करा।
1: हां वीर लाइक ओदन एदा होगा ना, जे करे खुल गया जे चल पे अंदर तो चलो हो, क्योंकि बजुर्ग नु चरण पता नहीं ना होंदा भी इत्थे फोन लब्बे दा भी कोई फायदा नहीं होंदा क्योंकि वो ना ही चलना होंदा। हो सकदा आ ही कारण हो सकदा मैनूं लगदा वीर, क्योंकि जिहड़े बच्चे अपने पेरेंट्स नु दिंदे ना फोन ओह तां दसदे आ, बेसिक जिहा तां दसदे ही
0: होंदे ना
1: फोन किवें तुसीं विचना।
0: हां वीर इहदा कोड की है या इह चलो इन्ना सिखा दिंदे आ वी कॉल किवें लाई दी है। मैनूं भी शक जिहा पिया कि उन्हां नूं इह भी नहीं सी पता कि ऑन किवें करना। चलो मैं गल जी टालती हूं आप थोड़ो इना हम ना आपू पता के कितों मिलिया की हैगा की कहानी है, मैं बह के उथे खोलन खोलन लग जावा या अनलॉक करन की कोशिश करा, जिहड़ी चीज़ दा नहीं पता हुंदा उस तो दूर ही रहना चंगा। यही कह दो कि घरदिआं नूं तुसीं दस दो ते ओह तुहानूं आपे सिखा देणगे। सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट नूं तुसीं सारे याद रखो, वधिया टॉप टॉप टॉप दे रेस्टोरेंट ते जाणा ना। सिंपली इंडियन स्वीट्स ने एक तां गोल गप्पे दा स्टैंड लाया होया अनलिमिटेड, जिन्ने मर्जी गोल गप्पे $9.99 च, ते बाकी आइस गोला $3.99 नूं इन्होंने लाइव स्टेशन लाए हुए ने, दही टिक्की चाट $5.99 दी, 275 गॉर्डन ब्रुक ट्रेल गॉर्डन ब्रुक कैसलमोर सिंपली इंडियन या 85 माउंट पेलियर स्ट्रीट मिसागा रोड एंड फाइनेंशियल सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। स्टूडियो थोड़ी साड़ी गलबात हो रही है, नंबर है अपना 905-673-3337, अपना फोन नंबर है 9056733-3337, 9056733-3337 अपना एको एक फोन नंबर है। तो थोड़े गल बात खूब हो रही ने, हमेशा की तरह थोनों असी जानकारी दिने होंने भी अपलायंस जंक्शन की, तो मनजीत थोड़े साथ जुड़ रहे हैं, मनजीत तो कुछ एक वधिया जी डीलां लै ली। देखो मंडे है, मंडे नूं तो वैसे ही स्टार्ट ऑफ द वीक पहले दिन ही तुहानूं वधिया कोई चकवी जी डील मिल जाए ना तुहाडे अपलायंसिस ते, बंदे दी वही रूह खुश हो जाती है। सो मनजीत साढ़े नाल फ्रॉम अपलायंस जंक्शन बड़ी ही जल्द जुड़ रहे हैं, तो देखिए मनजीत की लाइन मिलती है, दो मिनट। स्टूडियो दे विच लाइव कॉल करन दे लई फोन नंबर है 9056733337-9056733337। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी लहरा नवी सिद्धू दे नाल। अपनी बिजनेस दी एडवरटाइजमेंट दे लई या होर कोई भी जानकारी लैण दे लई कॉल करो 6475041557-6475041557। जी मनजीत वेलकम।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਅੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਪੀਸ ਦਾ ਅਪਲਾਈਅੰਸ ਬੰਡਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ 5 ਪੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਅੰਸਿਸ ਦਾ ਬੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਕ 65 ਇੰਚ ਦਾ LG ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ TV ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਇੰਚ ਵਾਈਡ ਦਾ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਟੌਪ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਹੈ, ਟਾਲ ਟੱਬ ਦੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਹੈ, ਵਿਦ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, $6,500 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ 5 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ $49.99 $4,999 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ LG ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ 65 ਇੰਚ ਦਾ LED ਸਮਾਰਟ 4K TV ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਬੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ 35% 35% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਪਲਾਈਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਂਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $2,200 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $14.99 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੀਲਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕਲਾਰਕ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ ਇਜ 905-450-0054
0: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਣੋ ਦੋ।

0: बबली वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
1: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटियां इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: सांझा विरसा मीडिया ले आए ने सेकंड एनुअल पिकनिक
1: संडे 23 अगस्त 11 AM टू 4 PM एट बल्ले बल्ले फार्म्स।
0: अनलिमिटेड फन मस्ती ते अपने आंदा होएगा साथ भंगड़ा गिद्दा गेम्स फूड स्टॉल्स मेहंदी सब कुछ रीजनेबल रेट्स ते।
1: तुसी अपनी डिशेस भी बना के ले आ सकते हो। पूरा पिकनिक वाला माहौल पंजाब वालिया वाइब्स। आज और फिर 23 अगस्त दिन एतवार सवेरे 11 बजे एट बल्ले बल्ले फार्म्स 13219 ट्रिंकोजी रोड कैलेडन।
0: जानकारी जा स्पॉन्सरशिप ले हरजीत जजुआ नु कॉल करो 647-835-5994।
2: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
4: पोंटो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इथे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जे एंड गैरी नू
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533 ते
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
6: Thank you guys Satnam Tata Pure Nepal Never Atal Mure Duni Sempen Duprasad Jap Asas Duasas Habisas Nadit Hosi Bisas Bole Sone Hal Satsiya Kal
7: ਕਾਟੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ?
8: ਹੋਏ ਸ਼ੰਮੀ ਪੱਠਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ।
9: ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਸ਼ੰਮੀ ਪੱਠਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਘਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸ਼ੰਮੀ ਪੱਠਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-917-7763

आज खूबसूरत श्वेता, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्कान सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रिक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सन सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत कर दें। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपाओ निरवैर रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुम चलते रहोगे, मुहब्बत जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी। तो एक बार फिर तो एक खिड़मी जी तपते एक सुरमई सवेर के नाल तुम शुरुआत कर चुके हो अज के दिन की। और पीयरसन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 बिल्कुल पद्धरा नज़र आ रहा है जिते मैनू उत्थे तुसी और असी इस समय डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही जुड़ चुके हैं। इस समय तुसी सानू सारनिया लंडन किचन वाटलू कैम्ब्रिज तो जिथे एक्सकलूसिविटी का यानी कि सिर्फ ए एम 530 फ्रीकुएंसी ही चलती है सुन रहे हो, उत्थे सानू तुसी सुन रहे हो। साउथ विच नाइग्रा फॉल तो लैके तुसी जो डनविल तक और डनविल तो लैके हैमिल्टन तक, ब्रैंडफोर्ड तो लैके तुसी ओकविल बर्लिंगटन होंदे हुए सानू एंटायर जीटीए तुसी सानू स्कारब्रो मार्कम नॉर्थ यॉर्क ईस्ट यॉर्क तो अलावा ईस्ट दे विच सानू तुसी कर्टिस बॉमनविल हैम्पटन टपते हुए न्यू कैसल तो लैके तुसी बेलविल दे एरिए तक सुनते हो, और नॉर्थ विच सानू तुसी एंटायर ब्रैडफोर्ड तो लैके सानू तुसी न्यू मार्केट और न्यू मार्केट तो लैके तुसी सानू जो 400 दे उपर बैरी तो क्रॉस करते हुए नॉर्थ विच सानू तुसी सुन रहे हो। इस समय ग्रैवनहस्ट दे उरां तक 400 दे उपर, ओरेलिया दे उपर 400 दे उपर माफ़ी चाहूँगा 11 दे उपर जिहड़ा हैगा सानू तुसी सुन रहे हो इस समय जो ग्रैवनहस्ट तक, विंगम तो लैके जो टोबर मरी तक 10 हाईवे के उत्ते तो नॉर्थ विच सुने जाता, यानी 1000 किलोमीटर का एरिया। इस तरह अमेरिका के सानू तुसी बहुत दूर तक अंदर अमेरिका के सुनते हो, वाशिंगटन नू जाते हुए तुसी रस्ते च लाई रखते हो, 90 के उपर चलते हो ईस्ट और वैसट के विच तुसी सानू बड़ी दूर तक 90 के उपर सुनते हो। हाईवे जिहड़ा मेन है 90 इंटरस्टेट हाईवे कहिंदे जिहनू, बहुत बहुत शुक्रिया सारे 400 सीरीज हाईवेज ने जिन्ने भी जी टी ए सुनते हो। इन्नी गल मैं क्यों कहना हुंदा कि जे कोई बिजनेस सुन रहा वो अपने आप नू प्रमोट करना चाहुंदा तो बिजनेस फायदा लूगा ए एम 530 का, वो थावान जिते थोड़े सोशल मीडिया फोशल मीडिया लटरम फटरम कुछ भी काम नहीं करता, कोई फ्लायर कोई पत्र पत्रिका कुछ नहीं करती, उत्थे एम 530 डिजिटल जी फ्रीकुएंसी है थोड़े क्लाइंट तौर तक लेके आती है। इन्ह सारे शहरों के अराउंड 15 लाख लोग रह रहे हैं जिते सिर्फ ए एम 530 चलती है। प्राइम टाइम यानी कि जो तुम सारे निकले हो रश आवर है, सवेरे सवेरे सारे फ्रैश ने इस शो न सुनते हैं, वो अपने बिजनेस नूं प्रमोट करना चाहुंगे। मैं एक अवेयरनैस के तौर पर गल कर रहा, तुसी अपने बिजनेस नूं लॉन्च करना लोगों के लेके जाना तो मेरे को 10 ना ने 20 ना ने इस शो राही तुसी कॉल कर लियो, कई नूं 4-4, 5-5 साल मैं एडवरटीजमेंट करदियां हो गए ने, तो तुसी मैनूं कॉन्टैक्ट करना, अपने बिजनेस नूं फेस देना चाहुंदे हो, फेस वैल्यू देनी चाहुंदे हो, मार्केटिंग वैल्यू देनी चाहुंदे हो, 416-518-3200 416-518-3200 नंबर है, 416-518-3200 देते तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और तुहाडे नाल इस अज दे शो दे विच मैं हाँ अमरदीप सिंह बेनीपाल।

0: certified health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: आज खुश तो बात हो गया
2: था। वो तो होना ही है। जब तक नो वीडियो दा, नो फ्रीजिंग, नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे, तेरी नक्ता बन दई
1: है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
2: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री और दस क्या चाहिए
3: चल क्या रहा है यहाँ पर
2: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
2: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा
5: A to Z किचन कैबिनेट बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
6: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
8: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: पूरे बैंड दे नाल परफॉर्म करने वास्ते, पूरे ऑर्केस्ट्रा दे नाल परफॉर्म करने वास्ते हंसराज हंस साहब अपने शहर जा रहे हैं। टिकटां वीआईपी लईआं तुहानूं मैनूं ही कॉल करनी पैणी है जां ticketmaster.ca ते लै लो टिकटां, जाके टिकटां जल्दी जल्दी लै लियो। और 18 सितंबर हुण तकरीबन महीना ही रह गया एक तरह का कह लो, अज 11 तरीक तो होगी तकरीबन, एक महीना 7 दिन ही रह गए हैं। तो टिकटां जल्दी जल्दी लै लो जे वधिया कवाली नाइट होनी है। स्पैशली तौर पर हंसराज हंस जी कहिंदे जनाब नुसरत साहब दीआं कवालियां गाणियां जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते फिर बीबा साडा दिल ही मोड़ दे, होर गल करन दी लोड़ नहीं। रक्षे कमर पीछे जैसे जोग लग जाता है। मेरे बहुत प्यारे वीर और रोजी शाह जिन्हों असी प्यार नाल शाह जी कहने हैं, और बड़ा ही कमाल दा वीर है मेरा, और उन्होंने ब्रदर स्पैशली तौर पर कैनेडा की धरती से आया मिस्टर तेज प्रताप सिंह जी दिल्ली वाले, और असी प्यार नोनू जी कहने हैं। और रोजी जी थैनू ही बहुत बहुत आप जी बहुत बहुत मुबारक, और पंजाबी विरसा रेडियो टेलीविजन की तरफ से भी नोनू भाई जान वेलकम टू कैनेडा। लो जी विधि छाबड़ा जी की हाल है, दिल्ली वाले बड़े इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली एक होर सवारी आई है हुण एयरपोर्ट तो आए हैं लैके आ रहे हैं। अपना काम कार बहुत वधिया सेट कर लिया विधि छाबड़ा ने, ठीक है ना जी।
1: हां जी,
0: शुक्र कि होना चाहिए वाहेगुरु जी
1: दा, वाहेगुरु दा ऑलवेज।
0: और विधि छाबड़ा जी इंश्योरेंस दे फील्ड विच तुहाडे वास्ते बहुत वधिया प्लान्स लैके आउंदे आ, और तुहानूं पता कि ईस्ट वाली साइड के बहुत फैमिलीज आ जिन्हां को अपने एडवाइजर घट है, अपनी कम्युनिटी के एडवाइजर घट है, उन्होंने विचों एक नाम बन गया ईस्ट वाली साइड के विधि छाबड़ा। सब तो पहला ईस्ट वाली साइड के शहरों के नाम दसो, नंबर सब तो पहला नोट करो साडे को, थैंक यू तुहाडा भी कर रहे हैं बिजनेस देंदे हो और बड़ी अच्छी गल है क्योंकि इंश्योरेंस फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिहड़ी कि तुहाडी सेफ्टी है, तुहाडी फैमिली दी सेफ्टी है। 416-524-3535 जी विधि जी की कहना चाहोगे?
1: इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दी ही गल करदी हां अज। मैनू पता है मैनू बहुत क्वेश्चन आते हैं कि तुसी इन्वेस्टमेंट बारे क्यों नहीं ज्यादा बोलते हो। इन्वेस्टमेंट बारे भी बोल सकती हां मैं, कोई वो नहीं है, बट ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਕੋਈ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ

0: reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello. Kataria Tours and Travel?
2: Hanji, Kataria Tours and Travel.
1: India diyan tickets chahidiyan si.
2: Oh, India ki tusi jitthon marzi diyan tickets lelo. India kithe jana?
1: 4 tickets Delhi diyan te 2 Amritsar diyan. Mil jaangiyan?
2: Mil jaangiyan. Bilkul mil jaangiyan. Delhi, Mumbai, Amritsar. Eho ta saadi speciality hai. Bas dasso ki tickets kadon diyan chahidiyan ne. Te haan, special tour packages te honeymoon packages vi saade kol available ne.
1: Parosiman service te sab to vadhiya rates le ikko ikna. Kataria Tours and Travel. Booking le aaj hi call karo 905-6 781200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: ते 98
3: ए की गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: ओ काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी करदे ने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
0: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-9878।
2: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना होवे।
3: बस इन्नी गल।

0: नहीं बेटा आप भी पढ़ लो
1: बिल्कुल, वो सबसे इजी है।
0: अच्छा पेपर में नहीं देना था?
1: उसे पेपर नहीं है स्टडी, वो और वो एक इजी और एक बहुत इजी है जो आप चूज करना चाहें। ऑफिस आए
0: कदों क्लासा शुरू होने दी?
1: उसका 16 तारीख।
0: अज कितनी होगी? अज तारीख कितनी है भाई? अज 10-11 होगी?
1: बिल्कुल जी 11। हां
0: दिन कड़े रह गए फिर? नहीं होते हो जाए, हुन एनरोलमेंट हो जाए।
1: हां जी 13 तक हो जाएगी, परसों तक
0: जी। अज कॉल करिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: परसों तक हो रहा कोई आए तो हरवी को तुम कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट तो वो घर ही पे होते बंदे को, हुन देखो इन्हें मेनू लगदा थोनू मेरे भी रट्टे लग गए हुन तां थोनू चाहिदा एक तां जे बच्चे आ बच्चे दे बर्थ सर्टिफिकेट जी, तुहाडा मैरिज सर्टिफिकेट
2: जी,
0: ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2025 ਦੀ 2025 ਦੇਖਿਆ
2: ਤੇ ਸੈਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ
0: ਤੇ ਸੈਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸੈਨ
0: ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਹੋ
1: ਦੈਟਸ 4-5 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਤੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ
0: ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ 8 ਸਾਲ ਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हमने देखा हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करती है।
0: गवर्नमेंट ही रही है?
1: बिल्कुल गवर्नमेंट दे रही है। हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी एडुकेशन में चेंज होती है, जैसे अभी लास्ट मंथ हुई राइट,
0: उन्होंने चेंज करती
1: है। हाँ, तो अभी जो 2 साल का एनरोल करेंगे
0: ये तो है,
1: उनको आज ये फायदा है क्योंकि उनको पूरे 2 साल में उतना ही सामान मिलेगा जितना बोल रहे हैं। अगर आप 6 महीने बाद एनरोल करेंगे हमारे साथ तब गवर्नमेंट का वो जो 1 अगस्त टप जाएगा सेकेंड ईयर वाला पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो अभी यानी कि हमारे पास अभी कुछ है, हाँ 20-30 सीट्स
0: है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: पर ये बढ़िया चीज है जेड़ी है ना।
1: हाँ जी ये बढ़िया है, ठाठा करके पैसे आ जाते हैं इधर।
0: चलो पैसे तो बंदा नाले मिट्टी, कई बार बंदा ना संगदा लगदा यार हुण आ किते उमर आ पढ़न दी, भई उस टीचर तो मैनू समझ नहीं लगनी, ओ की बोलदा मैनू पता नहीं लगना, तो ई तो टीचर है ही नहीं, तुसीं कहंदे हो कोई कोर्स।
1: बिल्कुल जी बहुत ईजी है, और बाकी कहते सेल्फ स्टडी मॉडल पे है, और हमारे लाइक कहते हैं हमारे वाइड रेंज ऑफ क्लाइंटेल है, 50 ईयर्स के भी है, 75 ईयर्स के भी है, सिंगल मदर भी है, अनएम्प्लॉयड भी लोग बहुत
0: हैं। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐ ਦੇਖੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।
1: बिल्कुल सही बोला आपने,
0: है ना।
1: अब लोग आते हैं हमें कहते हैं सर दूसरे बंदे ने परसेंटेज लिया, और जब हम ऐसा देखे जी जो मैं सुन
0: रहा हूँ परसेंटेज
1: नहीं, हमारी परसेंटेज
0: नहीं, नहीं। बोले हो
1: बिल्कुल नहीं है जी। था एयर पे कोई बंदा अपनी फीस बताता
0: है? $200 जी कहने फीस 200 लेनी है
1: काम के बाद,
0: जो तो पैसे आ गए
1: बस वन टाइम,
0: ये पैसे नहीं देना है कोई गल नहीं,
1: कोई पैसा आता है छोड़ पता आएंगे हम भी बाद में पैसे लेते हैं। उल्टा आपकी ईमानदारी चेक होती, क्लाइंट्स की हमारी नहीं होती, हमने साफ रखा एंड टू एंड सारा काम।
0: ये जो मैं इन्होंने सेकंड करता, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ 499 ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਜਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਆਹੀ ਈਮੇਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ
2: ਉਹ
0: ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ 2.5 ਮਹੀਨੇ। बहुत सारे मैसेज आ जाते परसों तो फिर आया भी ईमेल यही है जी। मैं कहा ईमेल कहते जी उन्होंने पैसे भेजने से, मैं उन्होंने फोन करो, उन्होंने जो उन्होंने भेजी है तो यही ईमेल होनी है। सो इस तरीके का तुहाडे भाई जी ये गल दी सही है, अगला कॉल कर सकता तुसीं नहीं करदे।
1: बिल्कुल जी हमने साफ रखा एंड टू एंड, कोई चलाकी कोई मीठी बातें नहीं।
0: अच्छा उन्होंने दूजा क्वेश्चन नहीं भी सीगा, हुण दूजी किश्त कदों होनी है? मैं क्या वो भी उन्होंने पता होगा, दो किश्तां जांदे है ना,
1: अगर 1 साल का कोर्स है 2 किश्त में आते हैं, 2 साल का कोर्स है 4 किश्त।
0: हुण उन्होंने सुन लिया उधर तुहानू आ बोलदे नू, मैनू कहिंदे भाजी सानू तां उदों ना उन्होंने मेरे ख्याल 80,000 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਜਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ 1.5 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲੋਨ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ,
1: ਜੋ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ।
0: ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
1: ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ ਅਬ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਮਾਰੇ ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਕਲਾਇੰਟ ਐਸੇ ਆਏ ਥੇ ਜੋ पहले से कहीं करके कोर्स खत्म कर चुके हैं, शो सुना, ईमानदारी से काम करे, कोई कमीशन नहीं है, ठा करके आए, एंट्री कराई, नेक्स्ट सेकंड कोर्स स्टार्ट।
0: एक तो ठा करके पैसे छड़ देते हैं, ठा करके बंदा ना बोलता,
1: साफ काम कर रहे हैं, कोई चलाकी नहीं, कोई मीठी बातें
0: नहीं। नंबर दे दो, नंबर ना कि
1: नंबर नंबर नंबर 50,000 से 1,70,000 का लोन हासिल करे 0% क्रेडिट चेक पे, नो क्रेडिट चेक 0% पे। नंबर 437-264-3175 हुणे कॉल करो, एस्टीमेट लो, जितना ज्यादा फैमिली साइज उतनी ज्यादा फंडिंग।
0: 437-264-3175 437-264-3175 लो जी इस नंबर ते कर लो कॉल।